japchi sail ekonkar satnam kartapurk nirbho nirvair kalmut ajuni sevang gur prasad jap aaj sach jugat sach hai bhi sach nanak osi bhi sach soche soche na hove je sochi lakvar chupe chup na hove je lai raha liftar bukya buk na utri je vanna puriya par sesya na palak hota ek na chale nal kif sachya raho ye kif gure tu te pal hukam na jai char na nanak likya nal hukam hi hova na kar hukam na kya jai hukam hi hovan ji hukam le variai hukam hi utam nich hukam hi duk suk paaye ek na hukam hi bakshish hukam hi sada babaye hukam hi andar sab ko bahar hukam na koi nanak hukam hi je bujeta hove keh na koi gave ko tan hove kise tan gave ko ta chane nishan गावे को गुण वरिया याचार गावे को भी क्या भी कम विचार गावे को सहज तरे तंके गावे को जीले फिर दे गावे को जापे जी से दूर गावे को वह हर हा दूर कथिन कथिन आवे तोत कत कत कती को तिकोत कोत देदा दे ले दे तत पाए जुगा जुगंतर काई काई हुकमे हुकम चलाए राव नानक वैसे वे परवाव सच्चा साहेब सच्चा नाय वाक्या बावा पार आखे मंगे ते दे दात करे दातार फिर के आगे रखिए जदी से दरबार मौके बोलन बोलिए जिस सुंदर प्यार अमृत वेला सच नाओ बरियाई विचार कर्मी आवे कपरा नदरी मुख द्वार नानक वे जानिए सद आपे सचियार तप न जाए कि तन होए आपे आप निरंजन सोए जिनसे भी आति पाया मान नानक गावे कुन निदान गावे सुने मरवा क्या बाओ तुप पर हा सुखा ले जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख वेरा समाय गुरीश्वर गु गौर बर्मा गु कृपा की माय जय हो जाना आखा नाही कहना कत न जाए गुरे कते बुझाए सब न जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए तीरथ ना वाजे तस पावा बिन बने के ना करी जे तिसे तू पाई वे का बिन के मैं मिल ले मातविश करण जमार महान जय कुर की एक सुनी गुरे कते बुझाए सब न जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए जे चुक छारे आर जा होर न सुनी होए नाव खंद विच जानिए नाव सले सब कोय चंग नाव रकाए के जस गिर जगले जे तिस नर न आवे तो पर न पूछे के कीता अंदर कीता का दोषी दोष त्रे नानक ने गुंग गुंग करे गुणवंतिया गुंदे तेह कोय न सुजे जे तिस गुण कोय करे सुनिए से पर सुना सुनिए तरत लकस सुनिय तीपलो पाताल सुनिय तो न सके काल नानक भगता सदा विकास सुनिय दू पाप का नाश सुनिय ईश्वर बन्म इंद सुनिय मोत सलाम मंद सुनिय जो जुगा तन्वित सुनिय शत सिमृत वित नानक भगता सदा विकास सुनिय दू पाप का नाश सुनिय सत संतो ज्ञान सुनिय असत का ईश्नन सुनिए पर पावे मन सुनिए लगे सहेश ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिए दू पाप का नस सुनिए सरागना के गा सुनिए शिर पीर पदिशाओ सुनिए अंधे पावे राव सुनिए हाथों वे आसकाओ नानक भगता सदा विगास सुनिए दू पाप का नस मन की कैद कहे न जाए जे को कहे के चे पछताए राकर काम न लेकनहार मन कब करम विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन सुर तो वे मंबुत मन सगवन राखे सुत मन मोचनता न काय मन जम के सत न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन माग तक न पाए मन पथ्यो पर गजाए मने मगन चले पंथ मने तरम सती संबंध
mankoy mane pave moktuar mane parvare sadar mane tare tare guru sikh mane nanakave navik ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मंगोए पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावे तेर के मन पंचे सोए तारा जान पंचे का गुरे त्यान जे को कहे कहे विचार करते के करने ना इस मन तोल धर्म किया का पुत संतोकता रम किया की सुत जे को बुझे होवे सच्यार तले ऊपर के तवार धरती होर तरे होर तिस्ते वर करे कमजोर जी जा रम गा के नाव समनल लिखिया बुरी कलम एओ लेख लेख जाने को ए लेखा लिखिया केता होए केते तन सियारी ओ रूप केते तने कुंकुत किता पसाओ ए को कुवाओ तिस्ते होए लख तरियाओ कुरित कवन कहा विचार बरन जावा ए कुवर जो तू पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख खुरिया मुवेत पत असंख चोग मुराय उदास असंख भगत गुंगियान विचार असंख सत्य असंख दतार असंख सुर मुवक्सर असंख मूल्य विलाय तार कुरित कवन कहा विचार बरिन जावा एक वर जो तू पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार असंख मूर राम कोर असंख जोर हरम कोर असंख मर कर जाए जोर असंख अल बहत्या कमाए असंख पापी पप कर जाए असंख कुरियार कुरे फिराए असंख मलेच मल बखाए असंख निंदा सिकारे वर नानक नीच कहे विचार परिन जावा एक वर जो तू पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार असंख नाव असंख ताव अगम अगम असंख लो असंखर सिर भर होय आखरे नाम अखरे सला आखरे ग्यांगी कुंगा आखरे लकम बोलंबन आखरे संसन जो बेकन जिन लेके ते सुनाए जे फुरमाए ते पाए जेता कीता ते तनाव वेना वेना ए कोताओ कुरित कवन का विचार बरिन जावा ए कोवर जो तु पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार वरिये हाथ तरे तंदे पानी तू ते हु तस्के मुद पलीति का परा होए जैसा बुलना ए ओ दोए परिये माँ पप्पा के संग ओ तो पेना वे के रंग पुनी पापी या करना है कर कर करना लगने जाओ आपे पीछा पे विकाओ नानक हुकमिया बो जाओ तीरता त्या दतन जे को पावे तिर के मन सुनिए मन मकी तबाओ अंतर्गत तिर मनाओ सगुन तेरे में ना एक होए विंगुन की ते वगत न होए स्वा सत पनी बरमाओ सत सुवन सदा मनचाओ कवन सुवेलावत कवन कवन जित कवन अवर कवन सिरुति माओ कवन जितो अकर बिल न पाया पंत जी होवे लेख पुरन भगन न पायो का दिया जन लेकन ले कुरन तिथे वर न जोगी जाने रूप माओ न कोय जा करता सिद्धि को साजे आपे जाने सोय कीव खरा का कीव सलाई कीव वरनी कीव जाना नानका को साकुआ के एकलक सियाना बदसाई बदीनाई कीता चाका होवे नानक जे को आपो जाने आके जान सोए पताला पताला गस गस और कोर कबल तके एक हन के बाद सहस तार कहाँ कतेवा सुनका एक दात लेका होए तलिकिए लेके होए विनाश नानक बादा आखिए आपे जाने आप सलाई सलाई तिसर न पाया नदरिया वे पावे समल न जानिए समल सा सुल्तान केरी सती मलदन कीरी तुल न होवनी जितिस मनो न विसरे अंत न सिफती के न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वे कैसियो न अंत अंत न जापे किया मन मंत अंत न जापे की ताकार अंत न जापे पारावर
अंकरंकतेवलाय ताकेअंतनपाए जाय एवंतन जाने कोय बहुतकये बहुता होय बदसाय बुचताओ उचे ऊपर उछनाओ हे व्रहुचे होवे कोय तिसुचे को जाने सोय चेवर आपतने आप नानक नदरी कर मिदत बहुता कर्म मिखिया न जाय बाधा ताता तिन न तमाय केते मंगे जो तपार केते कर नई विचार केते कप तुते वेकार केते ले मुकर पाए केते मुरे काई काय केते दू पुख सदमार ए भी दात्री दातार बन्न कलासी बाने होए हो राख न सके कोय जे को कहे अखन पाए वो जाने जितिया मकाए आपे जाने आपे दे आके सेवे के जिसनो बख्शे सफत सला नानक पातशाही पतिशाओ अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी अमूल बंदार अमूल आवे अमूल ले जाए अमूल बारे अमूल समाए अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवन अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल कर्म फरमन अमूल अमूल क्या न जाए आका कल्ले वल्लाय आके वेद पद पुराण आके परे करे वध्यान आके वर में आके इंद आके गोबी ते गोबिंद आके ईश्वर के सिद्ध आके केते कीते बुद्ध आके तारम के देव आके सुरम जन सेव केते आके अखन पाए केते कर कर तु जाए केते कीते होर करे त आकन सके के जेवत वावे तिरत होए नानक जन सच सोए जे को आके बोल बिदार तलिकिया सिर गवार गवार सोदर के हा सोगर के हा जित सरत समाले वाजे नारने के शंकर केते गावन हारे केते राज परिस्यो कायं केते गावन हारे गावे तूनो पन पनी वे संतर गावे राजा तरम दुआरे गावे चित कुपा लिख जाना लिख लिख तरम विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे ईद दस वेदे देवतिया दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावे सद विचारे गावे जति सती संतों की गावे वीर करारे गवन फरन फरन रखी सजु जु वेदा नाले गावे मोहन यमन मोहन सूरम मच प्याले गावे रतानु पारी तेरे आसा तेरे नाले गावे जोद महावन सूरा गावे कर विचारे गावे कन्दमलदा बरबंदा कर कर के तारे सही तुनु गावे जोद पावन रेते तेरे बगर साले और केते गावन से में चित न आवन नानक या विचारे सोई सोई सदा ससाए सच सची नाई हे भी होसी जाए रजासी रचना चिन रजाई रंगी रंगी बती कर कर जिनसी माया जिनु पाए कर कर वे के कीता अपना जीव तिस की बरियाई ज्योतिष पावे सोई करसी हुकम न कर जाए सो पति साव सा पति साहेब नानक रहन रजाई मुन्न संतोख सरम पछोली दियांकी करी विभूत किंता काल क्वारी काया जुगतंता परतीत आई पंति सकल जमती मंज जगजीत आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए कोवेश भुगत की आंगिया वंदार कर कर बाजे नाद आपना नति सब जाकी रित सवर सद संजोग बिजोग दुखा चलावे लेके आवे बाग आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेश एक माए जुगत बियाए तिन चले परवन एक संसारी एक पंडारी एक लाहे दीवन जिव तिस वावे तवे चलावे जिफो वे फुरमन ओ वे के ओ नन द्र नावे बहुताय ओ विदन आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेश आसन लोए लोए बंदार जोत पावे सोए कवर
कर कर वे के सिर जनहार नानक सचे की सची कर आदेश से आदेश आद नील नाद नहा जुजुए गोवेश एक दूजीवा लाख होवे लगवीस लख लखेरा आखिए एक नन जगदीश इरत पत पारिया छुरिया होई किस सुंगला कश की किता आये रीस नानक नदरी पाई।

आशमल मंसूर जो न सुरतिग्याम विचार जो न जुगदिशते संसार जिस जोर कर बे के सोए नानक हुतम निज न कोय राति रुति तिथि वार पवन पनिया करि पतन तिस विशति रति तरम सा तिस विषय जुग के रंग तिंके नानने के नंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिते सोहन पंच परवान नननी करम पवे निशान कच पखाए ओते पाए नानके आ जापे जाए तरम कन का ए ओ तरम ज्ञान कन का आ को करम केते पवन पनी वे संतर केते कन महेश केते बर में करी करिए रूप करम केवेश केत्या करम पुवि मिर केते दूपदेश केते ईश सुर केते मंदल देश केते सीत वदनत केते देवी वेश केते देव तरन सुन केते रत समन केत्या कानी केत्या बानी केते पत नरिंद केते सुति सब केते नानक अंतन अंत ज्ञान कान ज्ञान परचंत तिते नाथ को ओतनंत सरम कन की वाणी रूप तिते करी करिए बहु तनुप तज्ञ गला कथिया न जाए जे को कहे कछे पछताए तिते करिए सरा मम अम्बुत तिते करिए सरा सदा की सुत करम कन की वाणी जोर तिते होर न को ए होर तिते जोद महाबंसूर तिमे राम गिरिया भरपूर तीते सितो सित में ममाए ताके रूप न कत न जाए नाओ मर न ताके जाए जिनके राम से मनमाए तीते बद बस के लो करियन सच्चा मन सोय सच कंद से निरंकार कर कर बे के नदर नहाल तीते कंद मलदार बर बंद जे को कहे तन तन अंत तीते लो आकार जीव जी हुकम तवे तिवकार जीविका से कर विचार नानक न कर सर जात पहर दर सुनियार एरन मत वे तकियार बो कला कं तपताओ बंद बाव अमृत दान करिय शव सक्षी तक सा जिनको नद तरम तिंकार नानक नदरि नदर नहाल श्लोक पवन गुरु पानी पिता मत तरत महत दिवस राय तो